ज्यादा बड़ा सा किचन है तो मोस्टली लोग वहां पे किचन मतलब उस किचन में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं. अभी इट सो हैपेंस दैट आई हैपन टू बी द ओनली पर्सन जो इंडियन खाना बनाता है.